सुनाई। एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कम्प्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी, एलजी लाइफ गुड।

0: जो नेपाल में पहिलका बेर ग्याल्बलम प्रविधि से बनल आल्मोनियम कोटेड सादा और रंगीन जस्ता पाता गुला जुड़ा कलर और से तीन गुणा बेसी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक आप टिकाउ है।
1: तीन गुणा बेसी
0: हुलास छै त अरू कथिले खोज्दै।

हिमालय किरण पब्लिक क्याम्पस खाँदाबारी नपा 7 नयाँ बजार सङ्खुवा सभा। फोन नम्बर 0295611065 98421552504 98421526987 र 98520519906।

0: को ना थो त्यो भन
1: ना थो होइन ऊ मेरो हुने वाला श्रीमान हो म तिम्रो जङ्गली विवाह त के थाकिसके बस्दिन म मेरो घरमा

दिएले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ गुड।

एल जी ले आयो नया एल जी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एल जी लाइफ गुड।